कह साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचन साचन कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा घर सभागे शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंचदूत तुर करम पाया तुद जिन कौसे नाम हर कै लागे आनंद सुनो।

प्रथम पगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है।

दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद, संगत विच बरतौन दी आग्या बख्शो, समूह संगत दियां हाजरियां पेटावां दर प्रवान करनियां, शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, समूह परिवारां अंदर आपसी प्यार इतफाक सुख शांति तंदरुस्तियां वरतौनियां, बच्चियां नूं दीर्घ आयु गुरसिखी जीवन उच्च विद्या दी दात, माता पिता अते वडेरियां दी शुभ आग्या पालन दी समत बख्शिश करनी, कारोबारां विच वाधे करने, किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, इलाही हुक्म दी दात बख्श के नदरी नदर निहाल करो,

तेरे पाने सर्वत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भई अकाल की तभी चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की, जो प्रभ को मिलबो चहे खोज शब्द में।

0: अमृत नाम निर्मोल कहीरा वो दिनो मंतानी टिगना डोला दिटकर रहो पूर्ण हुई तृप्तानी वही जो बीच हम तुम कुछ होते तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल थैली हुई है ताते कणक मखानी परड्यो जोता सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कौ नानक निच कर बांधिया गुर किया बंदानी परड्यो जोता सह सुख शोभा बाजी अनहत बानी कौ नानक निचल कर बंदिया गुर कियो बंदानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोट महला पंजेवा गुर का शब्द रखवारे चो कीचो गिरद हमारे राम नामन लागा जम लजाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अवनासी ताकि सेवन विरती जासी आनंद करह तेरे दासा।

देख तेग पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे बोले सो निहालो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जामत।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੂਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟਕਾਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇ ਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਜਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ
सुनिया सिद्ध पीर सोरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लोह पाताल सुनिया पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद सुनिया जोग जुगत तान भेद सुनिया सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का स्नान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सारा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पा तिसाह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछै पछुताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन के सुध मन्नै मोहे चोटा ना खाए मन्नै जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पत स्यो प्रगट जाए मन्नै मग न चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवहै न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावहै दरगह मान पंचे सोहे दार राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहै करै विचार करते कै करनै नाहि सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार धवलै उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिसते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच माल भख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कहै विचार
ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਵ, ਵਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉੱਤਰ ਸੋ ਖੇਹ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੇ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਨਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ, ਕਵਨ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਨ, ਕਵਨ ਥਿਤ ਕਵਨ ਵਾਰ, ਕਵਨ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਨ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ, ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਇਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਿਸ ਅਠਾਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਹੈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵੀਸਰਹਿ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਾਪਤ ਟਹਿਵੇ ਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਾਧ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖਹਿ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹ,
अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिब लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्यान आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सोर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेहे ता आख ना सकह केई के जेवड भावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि स्यो कहियन केते गावन हारे गाव है तुहनो पावन पानी बै संतर गाव है राजा धर्म दुआरे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इदासन बैठे देवते आदार नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सते संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबाल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुद नो गाव है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो से जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर विखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसे हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्वयकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जेव तिस भावै तिवै चलावै जेव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बाव लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस
ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਅਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਾਲ ਸੂਰ, ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਾਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋ, ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤ ਸਾਹਿ ਦਸਵੀ ਛਪੈ ਛੰਦ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ, ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ, ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮ
नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपावने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरने नमस्तं अमरने नमस्तं जरारंग नमस्तं कृतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंद हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौने नमो सर्व पावने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे
नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेकी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परनासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छांद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रेसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैलो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुन है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जाते पाते सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विसव रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार
कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही बहु चित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंदर बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भर नाडै अन दंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ते चत्तर चक्कर परते चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये ना चित्तरै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै आदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आ सोक बरनै के सर्बा अपरनै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रं बेहिनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफवल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर मान्या है के सर्वतर दान्या है के सर्वतर गावना है के सर्वतर पावना है के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर साजा है के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जा हो के सर्वतर पा हो के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर काला है के सर्वतर पाला है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर सुख है के सर्वतर पोख है के सर्वतर तराण है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर मान्या है सदैवं प्रधान्या है के सर्वतर जाप्या है के सर्वतर थाप्या है
ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ, ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ, ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ, ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ, ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ, ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ, ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ, ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ, ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ, ਰਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ, ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ, ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਓਅੰ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੈ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਵਾਧੇ, ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ, ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ, ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਛਿਜ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਕਿਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਬਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਬਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਭੈ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਧੂਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਧੰਧ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ, ਬਿਰਕਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ, ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ, ਅਲਿਖ ਹੈ, ਅਦਿਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਟਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਭ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਿਤ ਹੈ, ਸੁਨਿਤ ਹੈ, ਅਜਾਤ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ, ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ, ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ, ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ, ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ, ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ, ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ, ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ, ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ, ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ, ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ, ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ, ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ, ਨਾ ਪੋਤਰੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ, ਨਾ ਸੱਤਰੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ, ਨਾ ਤਾਤੈ, ਨਾ ਮਾਤੈ, ਨਾ ਜਾਤੈ, ਨਾ ਪਾਤੈ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੇ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ, ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ, ਕੇ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ, ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੇ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕੇ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ, ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ,
हमेसुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मद भार छंद त्वय प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम, अर बर अगंज हर नर परपंज, अन गण प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड बार नर अमंड, अनुभव अनास मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम, अन छिज अंग आसन अपंग, उपमा अपार गत मित उदार, जल थल अमंड दिस विस अपंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनुभव अनास त्रित धार तुरास, आ जान बाहु एकै सदाहु, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुर बर अकाल, घर घर प्रणाम चित चरण नाम, अन छिज गात आजिज न बात, अन झंज गात अन रंज बात, अन तुट भंडार अन थट अपार, आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म, अन बरन अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद, करुणालय है अरकालय है, खल खंडन है मह मंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, काल कारण है सर्ब उबारण है, त्रित के तरण है जग के करण है, मन मान्या है जग जानिया है, सर्वं पर है सर्वं कर है, सर्व पास्या है सर्व नास्या है, करुणाकर है विश्वं पर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है खल खंडस है, पार ते पार हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी त्रित हैं, अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नर नायक हैं, खल कायक हैं, विश्वंग पर हैं, करुणालय हैं, निरिप नायक हैं, सर्व पायक हैं, भव भंजन हैं, अर गंजन हैं, रिप तापन हैं, जप जापन हैं, अकलंग कृत हैं, सर्वा कृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,

सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जोलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे दर्शन प्यासी दिन सरात चितवाओ आन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत दर मादे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल के वार सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला पंजवा वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद

कृप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसे गुरुदेव मंत्र नरोदरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी तुद डिठे सच्चे पातशाह।

दीप रविया सब लोई, जिसे आप बुझाए सो बुझ सी, निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की पावन गोद अंदर सुभाइमान गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी ने गुरबाणी की लड़ीवार कथा विचार सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी कीरतपुरी हैड ग्रंथी तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो वाले पासों सरवण की है। सिंह साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रहमत करन इस तरह दर घर की सेवा लेंदे रहन। सो हुण समा होया है कीर्तन का, आप जी नूं कीर्तन सरवण करवाउण लई स्टेज उपर सुशोभित हो चुके ने भाई सुखविंदर सिंह जी, गुरद्वारा जामनी साहिब वजीदपुर जिला फिरोजपुर वाले आओ भाई साहब होरां पासों इस तरह बैठ के कीर्तन का आनंद माणिए। दासरिया पासों सेवावां निभाउंदिआं होईआं भुल्लां लई खिमा जाचना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तैसे गुर सिख समंदर सी आनंदमयी, जैसे जोग जान तैसो लागे फल खेत को। तैसे गुर सिख समंदर सी आनंदमयी, जैसो जोग जान मन तैसो लागे फल खेत को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी निवाजी, गुरु रूप, गुरु खालसा साध संगत जीओ, सतगुरु जी की अपार कृपा मेहरामत दा सदका रोज वांग आप जी दूरों नेड़ों चल के दुनियावी कम्मां कारां चों समां कढ के शरदा भावना चाओ नाल पावन स्थान गुरद्वारा दशमेश कल्चर सेंटर जी दे पावन स्थानां ते हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर गुरु गरीब नवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठ करके गुरु सवारे कीर्तनिया पासों गुरबाणी कीर्तन का आनंद माण रहे सी। अति सत्कार योग भाई सुखविंदर सिंह गुरद्वारा जामनी साहब तिन्हां दे रागी जथे पासों आप जी ने गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणे है। उपरंत समा होया है भाई साहब भाई गुरदास गुरमत दे महान व्याख्याकार महान विद्वान महान लेखक तिन्हां दी पावन रचना कवित सवैया दी जो विचार चल रही है उस लड़ी तहत आप जी ने भाई साहब जी का उच्चारण किया होया 393 नंबर कवित दा मूल पाठ सरवण किया है। रोज आप जी दे सन्मुख बेनतियां करी दियां ने भूमिका रूप दे विच भाई गुरदास दी जिहड़ी रचना है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ते आधारित है, क्योंकि साडे पंथ विच बहुत सारे लेखक ने उन्होंने वखरे वखरे विषय ते बहुत कुछ लिखे है। किसी ने सिद्धांतक पक्ष, किसी ने इतिहासक पक्ष लिया है, जां होर कई पक्षां ते गल कीती है। भाई गुरदास जी की जिहड़ी रचना है वह अपने आप दे विच जदों असीं उहनूं वाचदे हां वह गुरबाणी के गुझे भेदां नूं गुरबाणी के कुछ डूंघे अहम असूलां नूं खोलण विच सहायक हुंदी है। अपनी कोई गल भाई साहब जी ने नवी नहीं कीती, उन्होंने नवीआं तो नवीआं उदाहरणां दे के गुरु साहिब जी दे जिहड़े वचन सी जिहड़े मनुख नूं समझण विच औख महसूस हुंदी सी, मनुख नूं समझण दे विच मुश्किल आ रही सी और वह सौखियां करन लई उन्होंने उदाहरणां बहुत सारियां दे के और उन्हां नुकतियां नूं चंगी तरह खोलण दा यतन कीता और कामयाबी भी उन्हां नूं प्राप्त होई है। जिहड़े विषय नूं भाई साहिब फड़दे ने और उस विषय नूं ऐन पूरी तरह क्लीयर करके हटदे ने, क्योंकि दो तरह के बंदे आम आपां देखदे आ, तुसीं पढ़े हो सारे स्कूलां कालजां च, हो सकदा तुहाडे चों बहुत सारे ने पढ़ाया भी होवे। कई टीचर ऐसे हुंदे ने वो गल कितों शुरू करदे ने पहुंच किते जांदे ने, शुरुआत किसे थों हुंदी है समाप्ति किथे हुंदी है विद्यार्थियों के कोई खाने च पैंदी नहीं गल, पर कुछ एक टीचर जिहड़े ने वो ऐसे भी हुंदे ने जिन्हां ने गल एक पॉइंट तो शुरू करनी है स्टैप बाय स्टैप उन्हों जिहड़ा सी समझाउणा है और ऐ लास्ट तक जाके पूरी तरह वो गल विद्यार्थियों के दिमाग में घोल के पा देनी है।
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਰਲਗੜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾ, ਮਿਲਗੋਭਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 25-25, 30-30 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 25-26 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਲੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਆਪਾਂ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं

प्रभ जो करे सो होई, खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई।

हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द वजाए जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द वजाए। हाँ जी,

पै हर पाया प्रभ अवनासी, हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदय नाम विगासी।

माता पिता हम बारिक तुमरी कृपा मैं सुख कोई ना जानी तुमरा उचे ते उचा सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो ए सो तुमरी गत मित तुम ही नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाई वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नूं समराउ श्री हर राय श्री हर किशन ते आईया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दया वै धाई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहेगुरु पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया मंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां संग निभाही तन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहेगुरु प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कहो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह ब्रत की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाह दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मननीवा मत उची मत पत दा राखा पवाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मां नितानियां दे तां नियोटियां दी ओट सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे आप जी दी हजूरी अंदर शुभ आनंद का लड़का पाई अर्शदीप सिंह गरेवाल पिता सरदार कुलविंदर सिंह जी गरेवाल अते माता रजिंदर कौर जी गरेवाल लड़की बीबा हरप्रीत कौर संधु पिता सरदार जगजीत सिंह संधु अते माता हरपाल कौर संधु सच्चे पातशाह तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी दी हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए लावां दा पाठ करदिआं कीर्तन करदिआं सेवा करदिआं आप जी दे दसरिआं पासों बेअंत फुल्लां बख्श देना जी कृपा करनी सुभाग भरी जोड़ी दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना परस्पर प्यार इतफाक दी दात नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना अंग संग हो के सहायता करनी दुखां दलिद्रां दे नास करने सुखां दे प्रवेश करने चढ़दियां कलां बख्शनियां जी दोनों ही परिवारां वल्लों आप जी नूं सुंदर पछाके अंगीकार कराए
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰਾਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੈ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰਹੀ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰਹੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: राख ले हो एह बारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन पवित्र चरणां अंदर आनंद कारज गुरु साहिब की कृपा नाल संपूर्ण होए ने, सच्चे पातशाह दे चरणां विच अरदास होई है। सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा बख्शिया है। टोडी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिला सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कृपा करन, सुपाग परिजोड़ी दे सिर ते मेर भरिया हथ रखन, आने वाला समा गुरु साहिब चढ़दियां कलां दा बख्शन। दोनों ही परिवारों नूं बहुत वधाइयां होण। दोनों परिवारों की श्रद्धा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरणां ते सदा बनी रहे। साडा विश्वास, साडा भरोसा गुरु साहिब दे चरणां ते इसे तरह बनिया रहे। हुण गुरु घर दा ढाडी जत्था ग्यानी भाई जगदेव सिंह जी जाचक, तिन्हां दे जत्थे पासों एक कविता विआह दे संबंध विच सरवण करिए। उस तों बाद फिर सारी समाप्ति होवेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
1: जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, दसां पातशाहियां दी जागत जोत, साहिबे कमाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी अंदर बड़े अदब सहित खुशियां भरे समागम ते एकत्र होई साध संगत जी, गुरु बख्शी फतेह दी सांझ पाओ। कोई भी रसना वांझी ना रहे, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह जी ने अज अपार बख्शिश कीती है। गरेवाल परिवार अते संधु परिवार दा अज एक नवा रिश्ता होंद विच आया। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार कुलविंदर सिंह गरेवाल अते बीबी रजिंदर कौर गरेवाल दे फरजंद, काका अर्शदीप सिंह गरेवाल दा आनंद कारज, सरदार जगजीत सिंह संधु ते बीबी हरपाल कौर संधु दी बेटी बीबी हरप्रीत कौर संधु दे नाल गुरु पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर होया है। परिवार इस पक्षों भी वधाई दा पात्र है कि आनंद कारज दी मर्यादा हुक्मनामे सहित 12 बजे तो पहला संपन्न हो गई है। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, परिवार दियां इस सुभाग भरी जोड़ी दियां शुभ मनोकामनावां पूरियां करन। समा बड़ा सीमित है। हर एक मनुख चाहुंदा है कि जीवन विच सुख होवे, जीवन विच खुशी होवे, पर खुशी ते सुख मिलदे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणां विचों। इसे करके महाराज जी दी बाणी दा वचन है, सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकी शरणी पाई है। सारे सुखां दा दाता सतगुरु है, खुशियां देण वाला गुरु है। जदों गुरु दी सुभागी बख्शिश भरी सवली नजर हुंदी है, फिर बंदे दे जीवन विच लखां खुशियां आउंदियां ने। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। अज संधु परिवार ते गरेवाल परिवार दे बच्चिया बेटी हरप्रीत कौर ते काका अर्शदीप सिंह दा आनंद कारज होया है। इन्हां दोवां ने अज गृहस्थी आश्रम विच प्रवेश कीता है, गृहस्थी जीवन दी शुरुआत कर रहे ने गुरु महाराज जी दी बख्शिश नाल। सतगुरु पातशाह दे चरणां विच ढाडी जत्थे ने इस नवी व्याही जोड़ी लई एक अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह तुसी सुखां दे सागर हो, तुहाडे कोल कोई कमी नहीं, साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सच्चे पातशाह तुहाडे घर विच किसे चीज दा घाटा नहीं। जेड़ी नव व्याही जोड़ी तुहाडे चरणां विच बैठी है महाराज, इन्हां दा आउण वाला जीवन, इन्हां दा भविख खुशियां खेड़ियां चावां मलारां नाल भरिया होवे। गुरु चरणां विच अर्शदीप सिंह अते बेटी हरप्रीत कौर दी चढ़दी कला लई, इन्हां दे गृहस्थी जीवन दे सुखां लई गुरु चरणां विच ढाडी जथा एक अरदास है।

कर किरिया खाट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरम।

बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

देह अपारा। जब आकर्ष करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू, जेते बदन श्रेष्ठ सबता।

जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा।

जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो किछ करे सो आपे स्वामी,